परमात्मा वन जंगल दे अंदर भी, तिण घा दे तिणकियां दे अंदर भी, पर्वत पहाड़ां दे अंदर भी, जल दे अंदर भी, थल दे अंदर भी, हर एक जगह रमिया। सुखमणी साहब धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करदे कह रहे।

गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ दिख है बेखाई मालक आख है मेरी अवस्था। नाम अमृत छाड़ देता है ते जहर नु पीना पिया। अमृत छाड़ दिख है बेखाई माया मोह भरम पै भूले, बस भुलेखे च पै गए। जो मिठा सी वह कौड़ा बन गया, जो कुड़त्तन सी ओनू मिठा समझ बैठे हां। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सियों प्रीत लगाई, पर एक आस बज गई एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। सतगुरु एक अरदास पाठ कीरत की, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। फिर बेनती करा चंगे पासे जान ली मेहनत करनी पैनी है, मंदा पासा तक खिन विच बंदा गया, एक पैर फिसलिया ते डिगा, पहाड़ ते चरण वास्ते मुशक्कत करनी पैनी है, ते शिखर ते गए हुए दा पैर फिसल जाए ते थले जान विच देरी नहीं। चढ़दिया 10 घंटे लगते ने, थले डिगदिया तो मिनट 2 ही लगते ने बंदे। पानी छत ते चढ़ाना हो, अर्ज कीती सी कल परसों, पानी नू चढ़ाण वास्ते उचाई ते लिजाण लई मेहनत है, बस थले छड्डण वास्ते मेहनत की लोड़ ही नहीं। बस एक टूटी खोलो थले नू तां अपने आप इहने भज जाणा है। जिहड़ी आदमी की सुरत है ना ख्याल है, उच्चे चुकण वास्ते मुशक्कत करनी पैंदी है, डिगण वास्ते कोई देर नहीं लगती। चेते रखो 10 सालां दे बने कोई ख्याल कई बार एक बार बंदा अंदरों थिड़क जाए तो सब कुछ निवान भी चला जाता। उच्ची सुरतली गुण, उच्ची सुरतली उदम, अच्छी उच्ची सुरतली मुशक्कत है, पर करिए कि मन ओही है। इनू वेखी दे जिन्ना दुनियादारा च लगता है उन्ना सिमरन वाले पासे नहीं लगता। भाई साहब ने एक बचन कहा, भाई गुरदास साहब जी उन्हों का कवित है, कहने मालक जदों मैं अपने हिसाब किताब करना वा दुकान का, सब हुण भी चलो आपां हिसाब किताब करने अपने बिजनेस का, हर साल लोकी किताबां अपनियां जिहड़ियां ने वहीआं खाते नवे लांदे। कहिंदा जदों मैं अपने व्यापारियां दा अपने लाभ दा हिसाब किताब करना ते रात नूं 12-12 अद्धी अद्धी रात तक 12 बजे तक ना थकना ना आकना, नींद भी नहीं आउंदी, लेखा करी जाना। कहिंदे जे कोई मैनूं कहे कलम पकड़ तूं 2-4 घंटे किते कापी उत्ते वाहिगुरु ही लिख दे, कहिण लगे 10 मिंटां बाद मेरा मन उकता जांदा। जिन्ना मन रात नूं रुपये गिणदिआं लेखे च लगदा है, इन्ना मन कलम चलांदिआं गुरु की बाणी लिखदिआं क्यों नहीं लगदा? जैसो मन लागत है लेखक को लेखै बिखै, हर जस लिखत न तैसो ठहरा भी। जिन्ना मन दुनियादारी च कलमां चलांदा है कदी वह हथ गुरु की बाणी लिखण तां सही। हुण आपां कहांगे जी ये पुरानियां गल्लां हुण तां मशीनी युग आ गए, गल पता कि ये मशीनी युग आ गया, लिखिया जांदा है, पर कदी तजर्बा करके देखियो जदों आपां कापी ते शब्द लिखने हैं ना, उहदे नाल 4 किरपा हुंदियां ने शरीर उत्ते, 3-4। पहली तां हथ पवित्र हुंदे ने, क्योंकि सतगुरु ने तां बाणी विच कहा कि जिस शाही दवात भी शाही पाई वह दवात धन, शाही धन, काना धन, कलम धन, ते हथ धन, ते कहिंदे जिहड़ा लिखा रहा वह लिखारी भी धन। धन सो भांडा असीं पढ़ने हां, कलम धन, महाराज कहिंदे ने ओ कलम ओ भांडा ओ शाही सब धन, सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। हुण जदों लिखने हां बंदा वेहले ही बैठा है ना, ते मान लो ओहदे उत्ते लिखना शुरू कर दे वाहिगुरु, एक तां हथ पवित्र होया, दूजे नेत्र पवित्र होए उहना हर जस देखिया, तीजा लिखण लग्या जबान बोली जबान पवित्र होई, ते रब मेहर करे चौथा किते लिखद्या लिखद्या मन उत्ते भी लिखिया जाए। महाराज कहिंदे जिन्ना संसारी काम लिखना है कदी परमात्मा दा यस लिखण दा उदम नहीं कीता। जैसो मन लागत है लेखक को लेखै बिखै, हर जस लिखत ना तैसो ठहरावी। जैसो मन बनज कै बिहार कै बिथार बिखै, जिन्ना मन सवेर तो शाम तक सोचता है भी इन्ना बिजनेस हो गया हुण अगा किवें वधना है, इस तरह ही करदा ना मन कि ना सोची जांदा। मेरा ख्याल जिंदगी मिली सी नाम लई, सारी जिंदगी आपां सच्चे

ते हर हर रूप समासी से तान जन हर त्याया जी जन नानक तन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन।

वेद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूका पांडज जे रज से तज किमे पोत पुज खान बहोर रच दीने कहूं फूल राजा ब बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आज जुगाद स्वरूप सुजाम पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो

संकट नहीं आए हैं। रक्षा हुई नहीं सब काला, दुष्ट अरे सौ टरें तत्काला। कृपा दृष्टि तन जाहिन हरिहो, ताकि ताप तन कमो हरिहो।

जगाई किया वही रास आकाश कथा तिन जानी जा को आई सुई रहा जो हर गुर से मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर ना हुई गो फेरा अंतर जामी पुरख बजाते।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Satnam Shri Vaheguru Ji, Shlok Mohalla Pehla. Tud Paave Tam Bhaave Gaave, Tud Paave Jal Naave Hai. Jin Onkar Parmeshwar Vyapi Nu Paaje Manjoor Hoye. Ye Baajiyan De Naal Jada Pajona ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ

भगत सूरमा के नाम कर्ण वाला, पैदा लाल माता विरली करे कोई कोई, हर कोई अपनी पंड नु चुकदाए, पंड किते दी तीर ते तरे कोई कोई, मिठा बोलिया तो दुनिया खुश हुंदी, ते कौड़ा बोलिया किसे दा जरे कोई, खातर अपने मर्दी कुल दुनिया, ए पर देश ते कौम लई मरे कोई कोई कोई। तन हन ऐसिया मावा जिन्हां ने अपनी पुख तो अजिहे सिंहां सूरमियां नु जन्म दिता, जिन्हां बारे किसे ने ठीक ही किया है, पै जरा ना गुरु दे खालसे नु सदा लंघदा मौत नाल खै खै के, जदों जी चावे आज वी दर साडे लंघे खालसा मौत नु खै खै के, सिर लखां नु वेख्या जंग कर दे, होनी कंबी ते लंघ गई बह बह के, कलगी सर दशमेश के खालसे कोल, होनी आवे ता सही पर खै खै के। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान ते पहला सिर हमले कर चुकिया सी, ते हुण चौथी बार एक करोड़ा रुपए का तन माल सैकड़े लड़कियां बन के दिल्लियों तुर आए, शहर तो दूर होंदिया ही सिख उसे मगर लग गए, सिख रात छापे मार के दुरानी फौजा नु लुट दे, ते जिन चरण तो पहला ही जंगली जा लुट दे। इन्हां हमलों तो अब्दाली बहुत तंग आ गया, उसने सिखा का खुरा खोज मिटाउन की धार ली, उन्हें शहजादा तमूर अते जहान खान 10,000 फौज तने सेनापति छाप के सिखा तो बदला लैन लई तोर दिता है। जहान खान ने सिखा की बर्बादी का कम आरंभ कर दिता, इलाके विच पैर जमा के वह अमृत करते करते आन पिया ते मनमानियां कर लगा, उन्हें इथों गुरुद्वारे ढा दिते, घर सार दिते ते फिर अमृत सरोवर की जद भी कर लगा। यह सारिया खबर लैके कोई गुरु का सिख बाबा दीप सिंह जथेदार मिसल शहीदा को दमदमे साहब पहुंचे, ते जहान खान दियां करतूतां दा पर्दा फाश है क्यों किया।

बड़े रोह विच आके बाबा दीप सिंह जी ने कहा, सिंगो मैं चलिया जे गुरताम आजाद कराने वास्ते, आ जाओ जिन्हें मेरे मगर आने। उड़ीकिया नहीं किसी ने बाबा जी के बचन सुन के शेरों के दल भड़क उठे। इस तो दूजा पहला शहीद दीप पाने तैयार खड़ा सी, तलवारा सूत लिया जाते हुए रस्ते चो होर भी अनेक सिंह जथे के नाल मिलते गए। सिंघां नूं नाल लैके बाबा दीप सिंह जी तरन तारण साहिब पहुंच गए। गुरु खालसा जी बाबा दीप सिंह जी का

0: सिंगो थोनू केरा पै गया हुण की करूंगे चारे पासो सिंगो थोनू केरा पै गया हुण की करूंगे
1: गुरु दे बाणे च सिंह बड़े प्यारे लगते वखरी सिंह दी पछाण वाई जगते हां गुरु दे बाणे च सिंह बड़े प्यारे लगते वखरी सिंह दी पछाण वाई जगते ओ करके दिखाण च यकीन रखदा ए बुक दानी खालसा मौत नूं तां गल नाल ला सकदा ए चुक दानी खालसा
0: चार पासो सिंह थानू घेरा पै गया हुण की करूंगे
2: ਚੁੱਕ ਦਾ ਨਿਖਾਲਸਾ
0: ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ

पर जिन्ना वड्डा मंत्री होएगा उन्ने बॉडीगार्ड भी ज्यादा हो। इसे करके जिथे मन ने रखे उथे ठीक है। बड़े बड़े जो दिस है लोग पढ़े उतारना।

हृदय ज्योति सलो। किन को व्यापक चिंता रोग, जिन्ने वड्डे ने उन्ने रोग भी ज्यादा। इसे करके पांडवों की माता रोज क्या करे सच्चे पातशाह गरीबी दे, गरीबी च रब याद रहे। पर कई होंगे माया करके अमीर ने पर मन करके गरीब होंगे, है बड़े तकड़े है, पैसा बहुत है, माया बहुत है, पर मन कितने खलोता, जोड़े भी झाड़ जाते, वो भांडे भी मांजी जा रहे, जोड़े भी झाड़ी जा रहे, सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि मन विच गरीबी है। तन करके अमीर बन गए, मन करके गरीब रहना। सत संगत जिन्हों का मन गरीब है सतगुरु कृपा भी उन्होंने करते, जे भरे हुए हैं फिर महाराज ने कितने कृपा करनी। भिखारी सोहने कपड़े पाए हुए चंगा बन के आ जाए किन्ने वेखना, उन्होंने किसी ने कोई कुछ नहीं देना, तरस नहीं आएगा किसी को। सतगुरां भी साड़ी मन की हालत से तरस आना, यदा मतलब यह नहीं मन की गरीबी भी कपड़े भैड़े पा के आओ सतगुरां को, नहीं सतगुरां को पता, मन गरीब होएगा मंगण की जाच आएगी फिर कृपा हो। मंगण की कईयों को इन्ना ढंग होंदा है, एक भिखारी है वो ढंग नाल मंगते ने, नहीं भी कुछ देना होंदा तां भी कुछ दे दे, पांच दस दे ही जाओ, तरस ही आ जाता, तरला ही यहो जहा करते हैं। सानू तरला नहीं करना है, सानू अजे गुरु के द्वार से ढहना नहीं आया, सानू अजे झुकना नहीं आया, कितने हम भीख भिखारी तेरे जाच भी सतगुरु सिखा गए। तू निज पाता है दाता, बड़ा वड्डा दाता है, ते कृपा करो ओहो दयाल, दयाल हो के नाम देहो मंगत जन, नाम दे दियो फिर होएगा कि सदा रहो रंग रंग रंग।

आओ महाराज ने कृपा की है। ये जो सतगुरां दी बख्शिश दा सदका, श्री रहमत दा सदका, 135 पुरानी गुरु के जहाज जी।

माया लैके हुण कोई स्टेज ते ना आवे, थोड़े समय बाद समाप्ति हो जानी है। जिन्हें माया भेटा देनी हुंदी है वो अरदास तो पहला आनंद साहब जदों पढ़ांगे उदों, हुण कोई उठ के ना आओ। जो सुन रहे हो उन्हें पल्ले बनो, सब तो वड्डी भेट है। सास संगत जी हरी गोपाल तेनू घाटा पै गया लखां ते करोड़ां दा, ध्यान से कहना, मेनू तो 500 दा घाटा दिसदा लग जाना पता थोड़े दिन। हरी गोपाल ने की कीता, घर गया, रस्ते दे विचों इहने हीरे खरीदे 500 दे, अपने देश दे जिहड़े 1300 वट लिया, 500 दा 1300 बणिया, बड़ा खुश, बहुत खुश। जदों गया घर बापू वेखणा सार कहिंदा कृपाल ते भाई नहीं तेरे, सतगुरु ते श्री साहब पाउंदे ने, तेरे भाई नहीं किथे आ? कहिंदा कोई नहीं, पहला प्रसाद लैंदा बाद च गल करांगा। प्रसाद दित्ता, चलो बह गए, सारा टब्बर बह गया, गल चलाई, दस फिर सतगुरु किहो जे लगे, गुरु की गल सुना कोई। कोई गुरु की गल, कोई गुरु की कहानी कथा सुना कोई। हुण सास संगत जी गुरु की गल जे किते सुनी होवे ते पता होवे, जे हुण कदी इतिहास पढ़िया नहीं सुनिया नहीं आपां नूं की पता। जद कोई गुरु संगत कीती ही नहीं, संगत किते गए ही नहीं, जे जाणिया ते मत्था टेक के मोड़ो ना कंध पड़ते गए 10 रुपये रखे ते मोड़ आए, सानूं की पता लगना? खुद नहीं पढ़ना ते सुन लैणा, जे सुनना नहीं ते फिर ते पता ही कोई नहीं साडा इतिहास की, फिर ते असीं टुट्टांगे। कदे ना कदे कोई आ गया ऐसा, उहने अपने मगर ला लैणा। वो दस भाई गुरु की गल सुना, एक कहदा गुरु, तू एवें गुरु गुरु करी जाना, वो कहदा गुरु है ते निर्दयी है। सारी गल सुनाती, मैं 500 रुपया तेरा दिता गुरु नूं दिता, गुरु ने अगो मैनू एक खुशियां का बचन देता, कड़ा देता, देख देती, वो तो शुक्र है आपां ते घाटा पै जाना सी 500 दा, राज मिल पिया कि ध्यान सिंह कमला सिख गुरु का, ते उहनूं मैं 500 रुपया उन्हें मैनू दिता, मैं उन्हें गुरु दी खुशियां का बचन अरदास कर। वेख बापू 500 रुपए के हीरे लैके 1300 वट लिया, दसंबर दास उची उची रोवे, कहते आप भी डुबेगा सारे टब्बर में डूबे, वो गुरु दी खुशियां से 500 बदले। सतगुरां की खुशी कई कई जन्म पुठे लटके नहीं मिलती, तो तू बेजा है, गुरु दी खुशियां मिलिया सी बर्बाद कर आया, माया का लालची हो गया। बाबा माया साथ ना होए, इन माया जन्म होया विरला बुझे होए। सास संगत हुण 3-4 दिन लंघे, इहदे नाल कोई गल नहीं करदा, इहनूं कोई बुला के राजी नहीं टब्बर च, घर च ना प्यो बुलाए ना मां बुलाए ना बच्चे बुलाउण, जदों कोई भी बुलाउंदा नहीं, बस आखिर घर दुखी, मत टिकाने आ गई मना, सारा टब्बर ही नाराज, सारा परिवार ही। बस फिर कहिंदा बापू चल चलीए, फिर मारक कोल चल जाए बखताउण तुरते, कहिंदे पहला ध्यान सिंह को लैके चल, जिहने 500 रुपये दे तेरे तों गुरु दीआं खुशियां लै लईआं, अरदास करा ली। जदों गए उहदे घर, कच्चे मकान तों पक्का बणिआ होइआ, अजे 10 दिन ही लंघे सी, ते मकान सोहणा, ये कहिंदा ध्यान सिंह दा घर विक गया है, पहला गहने पै गए हुण विक गया, लग्या जाण ध्यान सिंह आ गया अंदरों बाहर, हरी गोपाल अंदर नहीं बढ़ता, आ जा अंदर, वो तेरा घर है, कहिंदे मेरा ही है, ये कच्चे तो पक्का किदां बन गया, तैनूं कहा सी ना मैनू घाटा 500 दा, तैनूं लखां करोड़ां दा, तू चलिया गया, मैं चुक के कई गेत कम कर गया, टक मारे ही सी थल्यो सोने दियां अशर्फियां दा घड़ा निकलिया, श्री वाहिगुरु, इन्नी माया मिली है मैनू, इन्नी माया देती सतगुरां ने कि मेरिया 7 पीढ़ियां भी खांदियां रहन तां भी नहीं मुकदी, इन्नी माया आ, बन गया मकान पक्का, माता भी टिकाणे मना, गुरु दियां खुशियां, जे गुरु खुश है ना फिर ते कोठी आप ही बन जाए, जे गुरु खुश है किसी चीज की लोड़ नहीं पैनी, उत्थे जाओगे तुसी उन्होंने नाल दी नाल ही वीजा ला देना, जाओ बाहर, जे गुरु खुश है, गुरु की खुशी वे सब खुश है, सतगुरु खुश ने कोठी बन गई, सतगुरु खुश ने पुत्र धीआं रिश्तेदार सब खुश,
جی گرو خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں، جی ستگرو خوش نے تو سب کچھ نہیں. ہوں روتا ہے من میں کی خیال سوچتا رہا ہے، ہوں اپنے کرما نو روا. دس سنگت آخرکار ستگران کے چرنوں میں چلے گئے، ستگران کے دربار چ پہنچے. دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج دربار سجیا ہوا ڈگ پیا چرنا سے،

प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाई, सतगुर कै बल जाई, हलत पलत प्रभ दोवै सवारी, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया।

कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पति आया उमराव हो आग्या चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कत आवै कत जाई।

कल्याण मंगल सिंह घर आए कर इस नाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकी कीमत कहन ना जाई सिर शाह पातशाह गुर भेटत मन ओ माहा सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कै साथी गुण निधान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा।

आकारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आई आनंद मंगल सुख पाई संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है आन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए कोट जन्म के किल बिख नाते हर चरणी चेत लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरे कल राखी जी जंत सब भये पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप भये सब पावन जन नानक सुख घर आया।

जापे आनंद रहो गुण चरना, पाओ कत नहीं प्रभ सरना रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी, प्रभ अब चल नीव सारी। बाल धन तकिया तेरा, तू भारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया, सो प्रभ आप तराया। कर कृपा नाम रस दिया, कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई, सब उठ लागी पाई। सास सास प्रभ त्याई है, हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा, सूख सहज आनंदा। प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी। तां गत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना। नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओत सतानी। तब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का पासा। मन पूर्ण होई आसा, जह देखा तह सोई। हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखी। सब जन्म जन्म दुख लाथी, निरपहो नाम त्याया। अटल सुख नानक पाया।

जप नानक नाम सत साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ मज्जन गुरे आंदा रास्ते जप हर हर किल विखना।

रखवाला कर कृपाय अपनी कर राखी मात पिता ज्यों पाला रहाऊ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवह से वडभागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा।

लाया, हर संग सहाई पाया। जह जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गाव हो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पाव हो। जी कै संग सहाई रहाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइए। बहुड़ ना जोनी पाइए, जिस देव है पुरख विधाता। हर रस तिन्ही जाता, जम कंकर नेर।

पूरी, प्रभ रब रहे आपर पूरी, हेम कुशल भया इशनाना, पार ब्रह्म बितहु कुरबाना, गुर के चरण कवल रिद धारी, बिघन न लागे तिलका कोई, कार्य सगल सवारी रहाउ, मिल साधु दुर मत खोए, पतत पनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते, सब लाते पाप कमाते, गुण गोबिंद नित गाइए, साध संग मिल त्याइए, मन बाशत फल पाई, गुर पूरा हृदय त्याई, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम त्याया, रब अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा, दह दिस शतर मेघ कटा घट, दामन चमक डरायो, तेज अकेली नींद नह नैन है, फिर परदेस सधायो।

मंदर चढ़ के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हों हों पीत भयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दूरायो भयो कृपाल सर्ब को ठाकुर

जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति, पहुड़ पिता गल लावे पिछले औगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब बिद जाने, ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बिनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा, दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा, गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पार उतारा रहाओ, तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किछ करना है।

जीवै प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई धार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी।

सुवारी हरे अपनी कृपा धारी प्रभ पूरन पैज सुवारी अपने दास को भयो सहाई सगल मनोरथ कीने करता

काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभ अवनासी ताकि सेव न बिरथी जासी अमद करह तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा चौरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पैज सुवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संत हो किस बिन अवर ना कोई करन कारण प्रभ सोई रहा प्रभ अपने वर दीने सगल जी वस कीने जन नानक नाम त्याया ता सगले दुख मिटाया सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुभाखिया।

दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला रहाउ प्रभ करन कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सुवंती चौथ महला पंजवा अपना गुरु।

हर हर हर अराद हो, हर अराद सबो किश पाई है, कारज सगले साधु हो, रहाओ प्रेम भगत प्रबलागी, सो पाए जिस वड भागी, जन नानक नाम ते आया।

दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच बखाना, चौथ महला पंजवा, ऐतै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरैन सास सास संभाली।

कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना, विकैठ गौरी लाठी संग मलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी।

संतन की ओटा, जो सिवरै तिसकी गत होवै, उधरह सगले कोटा रहाव। संत संग जस गाया, इहो पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत

तेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ सरनाई, मुख निंदक कैशाई, चोट महला पंजाबी।

बलवंद खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के हली गुर सिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली पहे कबूल हसन नाल जा काल मर्दी काली माता खीवी सौ सोए

जयकार गुरु प्यारे हो इस धरती दे उत्ते धर्म वाले पासे श्रद्धा विश्वास भावना प्रतीत निश्चा ये बड़ी वड्डी दात है। आज दे कीर्तन दा केवल एक निशाना गुरु नानक महाराज दे चरणा ते साड़ी श्रद्धा ते निश्चा बज जावे। हे गुरु नानक कौन कौन तेरी जय जयकार कर रहा है, किवें जिक्र है, गुरबाणी राही आनंद मानना, श्रद्धा आजे गुरु नानक दे चरणा ते वड्डी भगती भावना निश्चा। आखी आखे भाई गुरदास जी ने

सब कोई लखां करोड़ां दी गिनती च सिंधी ने गुरु नानक दे आशक इशारा लेना तैनू हिंदू भी अनेकां मुसलमान भी अनेकां तिब्बती भी अनेकां सिख भी अनेकां सिंधी भी अनेकां हुण थोड़ी अगे आना जरा रावी दे किनारे दा एक जिक्र है वो पांच सात मिनट च लैके दास समाप्ति करेगा। भाई सैदा होया जी बाबा नानक जी वेले गुरु नानक साहब रावी दे किनारे चौंकड़ी मार के अपने स्वरूप दे ध्यान च समाधि लाई बैठे थे। भाई सैदा इन्हें दर्शन किए गुरु नानक बाबा जी के मन में एक फुरना बनया जरा ध्यान देना फुरना कुछ हल्का बनया फुरना की बनया कि गुरु नानक साहब रावी दे किनारे अंतर ध्यान होके अपने स्वरूप दे ध्यान च बैठे है पर भाई सैदे का की फुरना बनया कहिंदा गुरु नानक साहब जल देवते की आराधना कर रहे आखो सतनाम एक मन दे विच ना ये फुरना बना लिया भी गुरु नानक साहब जल देवते की आराधना कर रहे ने कल तो मैं भी करया करा ये जिक्र जे कि अगले दिन घरों आ रहा है ये फुरने दे नाल कि मैं भी आराधना करनी जल देवते इतिहास जिक्र कहिंदे जदों घरों आ रहे हैं ते रस्ते दे विच जल देवते ने दर्शन दिते गज के हक सतनाम भाई सैदा कहिंदा जी बड़ा नूर है कौन हो तुसी वो कहन लगा पुरखा मैं जल देवता वा भाई सैदा कह लगा जी तुसी जल देवता मैं ते जा रहा सा तुहाडी आराधना करन तुसी रस्ते जी आराधना तो पहले ही दर्शन देते अगों जल देवता की आखदा कहिंदा भाई सैदा

जलेहं थलेहं पिता वेहं प्रभु हैं अजू अजू हैं देशादि अपेश हैं जंग पर्याद शंद अगाध्य बाध्य नंदी स्वरूप नम सर्व माने समाधि नमाज तुंगा नाथे नमाज तुंग परमाथे नमाज तुंगा गंजे नमाज तुंगा पंजे नमाज तुंगा काले नमाज तुंगा काले नमो सर्वदेशे नमो सर्वदेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साजाय नमो महामाय नमो गीत गीते नमो गीत।

जाने आएंगे, सर्वत्र जाते आएंगे, सर्वत्र खाते आएंगे, के सर्वत्र पान लाएंगे, सर्वत्र मान लाएंगे, सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वम कली मैं के परम सही मैं के आगल ला मैं के साहब कला मैं के उसनो बजूंगा तो महामद रजूंगा हमें सर सलाम है सलीख तम धाम है गनीम उसकाशता गरीब वल बरासता है बुलंदर मकान है जीन वल जमान है तमीज वल तमाम है रुजू वल निदान है हरी फल जीमा रियाय की जिक्री मैं अनेक अल तरंग है तेज है पांग है अजीत वल निवाज है गनीम वल खराज है निरोग स्वरूप है निर्मोग भूत है।

सकल कामय निर्भाव स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, अंगाद रूप है, नाद स्वरूप है, अनंगी अनामे दृभंगी दृगामे दृभर्गम दृवादे गंजे अगाधे शुभम सर्पागे सो सर्वा निरागे। सर्वभक्त स्वरूप है, सजय शुद्ध है, गणरकम प्रणाश है, प्रतिकूल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है।

सर्वं हन्ता सर्वं दन्ता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं हन्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं दुःखं सर्वं मुक्ता रसावलशान्तता प्रसाद नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे नन्दं स्वरूपे भङ्गं भूते ब्रह्मासं ब्रह्मासे सदा सर्वसाधे अगाधस्वरूपे निर्वाधभूते अनंगी नामे तरपंगी तरकामे नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न पाता नरसाकं श्रीकामे स्वामी गाय प्रवाह जय जय।

अकलन कृत है सर्वाग्रत है, करता कर है हरता हर है, परमात्मा है सर्वात्मा है, आत्मवास है जस के जास है, कुजंग प्रयात शांत। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो ब्रह्म।

चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह काम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्व तत्व स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रनाथ इंद्र भूते अलंकार रूपे अलंकार लंते नमो आस आसे नमो बांग बांगे अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे कृपंगी दृगा अनंगीय कामे एक श्री चंद्र

समझियो हमारा, नमस्कार तुसी को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहट कियो, घट घट के

जे को गुर ते बेवखो वैगण सतगुर मुक्त न पावे पाव मुक्त न होर से कोई पुछो वे किए जाई अनेक जूनी परम आवे गण सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर सब सुनाए कहे नानक विचार देखो गण सतगुर मुक्त न पाए।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

चिंतो पाए थे सब माले सुनना जिन करते करना के चिंता ते करनी सो जिन करते करना के चिंता ते करनी सो करता चिंता करे जिन

लख चूड़ियाँ लख जाए लख चूड़ियाँ लख जाए लख चूड़ियों का नाम है राम दिन सीता सब बाहर बम बटिया वो ही बकरा

अमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन विश्राम रहा। प्रभ के सिमरन गर्भ न बस है, प्रभ के सिमरन दुख जम नस है, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टर है, प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन आम दिन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्याप है, प्रभ के सिमरन दुख ना संताप है, प्रभ का सिमरन साल के संग सर्व निधान नान खरंग, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नव निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सुभला, प्रभ के सिमरन सुफल फला, श्री सिमरै जिनाप सिमराय नानक ताके लागू पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभ के सिमरन सब किस सुझाए, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आस्था, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभ जी वसें साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रदान, प्रभ को सिमरै से वे मोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सदबलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख ब्यावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरै वसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कबू न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन ने चलासन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का प्रगट प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन पहे सिज्जति जाते, हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसा बुझाया, नान गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर दुख वंजना, घटघट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुमित न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय माँ भ्याम दूध जम दल है, तय केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल हो गए अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख गनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोड़ी बंदना परे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग पिथ ना बुझावे, हर का नाम जपता घावे, जी मार गे जात के लाते, हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ध्याये, नान गुरुमुख परम गत पाइये, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपते हैं पार पराही, अनेक बिघन जय आय संहार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई ऐसा के संग, जेह मार के गने जाय न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जेह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जह महा प्यान तपत बोगाम, तह हर के नाम की तू ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन पुजा कर खे, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस कर संत दिन रात, हर हर औखत सार समात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है, हर का नाम जन को मुकुट जुगत, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कप पर न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के उठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जाने, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त गोह करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा,
नाम की महिमा संत रिद्वस है, संत प्रताप दुर्सभ नस है, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम से आई है। नाम तुल कछवर न हुए, नान गुरुमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, देखे सर्व डंडोल पूजित नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत व्याख्यान। जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग मन मदे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो में कर राती, वर्त नेम करे बहुपाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नान गुरुमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव है, महा उदास तपी सर थीव है। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर कूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल ना जावे। हर के नाम सम सर कछ नाहे, नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान ना मन से हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न दुखिया टरे। जल तो वे बहु दे अनीत, शुद्ध का हुए काची भीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत स्याण जम का पौ व्याप है, अनेक जतन कर कृष्णा ध्राप है। पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपाव दर गह नहीं सिजे। छूट स्नायु पयाल, मोह व्याप है माया जाल। अवर करतूत सगरी जमदान है, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लूरे, सात संग एहो मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ता के बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान।

ਆਮ ਤਿੰਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖ ਹੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੋਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਨਿਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਾ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸੋਏ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਵਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ਬਿਲ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਮੁਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਦਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਨਿਜ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਖੂ ਅੰਦਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟੈਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਕਿਸੈ ਵਿਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾਏ ਪੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਥ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਫਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਤ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਸ ਨਾਏ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੋ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਕਰੈ ਅਥਾ ਜਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨਾਨਕ ਤੇਗਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਨੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓਦ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬੁਜਾਰਤ ਬੂਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੂਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂਆ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ ਅਨੰਤ ਕੇਰ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨੇ ਕਹੀਂ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਗ ਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਨੀ ਤੁਮੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀ ਗਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਕਵਾਵੇ ਏਕ ਬੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਦੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੁ ਮਨ ਊਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬੋਰ ਸਹਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁ ਰੁਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨੇਕ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਕ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ
मिथ्या तन तन कुटम समाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज योगन तन माल, मिथ्या काम क्रोध वितराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या क्रोह मो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्द को हिरे, मिथ्या नेत्र पेक्षित पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या वास लेप विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, वृद्धि ताकत की आर्जा, साच बिना कह होवत सूचा, वृथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों के ती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारस दाम, तन तन तेज अन जे कट बस्यो हर नाम, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बार पेख न काऊ कीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे, जिसके अंतर बस है निरंकार, जिसकी सीख करे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पर आता, करो बेनती पार ब्रह्म सुख जाने, अपना किया पैमाने, आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कर जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर या समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिस जायमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मनमाए, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मनंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय, जे प्रसाद तुझ सब को माने, मुक्ता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दर गय मान पावे, नानक पद से ती घर जावे, जे प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाक प्रभ ताके, जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभुचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद आपूखन पैरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोय प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत्य से ध्याई, तिसे त्याय जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रखे, जे प्रसाद करें पुन बो दान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास सितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कहे, जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अव कतलागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूल तू ताको जाप, जे प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तास्यो राज, जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सुनाओ, आप गवाए सोहर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसैवन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किनु लया, जित जित लावो तित लगे हरनाथ, नानक इनके कछु न हाथ, श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता हुए,
सुनमी तानान किन्वंता साध जना की अचरज कथा हस्पदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटाय अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा हिस्मानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल है साध के संग आवे बसपंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब पीरेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नक तू धावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीर साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू धावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लहे साधु के संग अजर सहे साध के संग बसे स्थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु के संग सोत हन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुरु गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नाही कछ काल दर्शन पेट थोत निहाल साध के संग कलुखत हर है साध के संग नरक पर हर है साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग विचरत अलमेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बस है नानक उदरै साध सुन रस है साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नमन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कटकट मीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जीता सुने ते तब ख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सराबियंत साध की शोभा उचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न भाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है कस्मिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो वसदा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतत समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का

सुभला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जायद आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का

ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰਤ ਰਹਿ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੈ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਪਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲਕ ਹੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੈ, ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ, ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ, ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕਉ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਥ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰੈ, ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕੋ ਉਤਾਰੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣਗਾਮ, ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਦਸਮ ਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸੋਕ, ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਤੈਹ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ, ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅੰਤ ਰੰਗ, ਲਖੇ ਨਾ ਜਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ, ਉਸ ਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਪ ਕਾਪ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਹੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਕ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਤਾਮਸ ਸਾਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਗ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਪਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ,
कई कोट कई बैरागी राम नाम संकीर्तन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक के जन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक कंकार कई कोट की ने बो पांत प्रभ ते हुए प्रभ माए समात ताका अंत न जाने कोई आपके आप नान प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सत सभी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहित समावे अपने जन को सास सास समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण है जल थल में जल सोय अष्टपादी करण करावन करने जोग जो तिस पावे सोई हो खिन में थाप उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मेहरिया समाई प्रभ पावे मानव गत पावे प्रभ पावे ता पाथर तरावे प्रभ पावे बिन शास्त्र राख है प्रभ पावे ता हर गुण पाक है प्रभ पावे ता पतित धार है आप करे आपन विचार है धुआं सिरिया का आप स्वामी खेल है बिखरे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरना आवे कहो मानक से क्या हो आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किस ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत भिख्या में रचे जे जानत अपन आप बचे परमे पूला दे दिस्थावे निमक माही चार कुंड फिरावे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले हिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु ना आवे तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीश ता का लेखा ना गणे जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगाश अपनी बनत आप बनाई नानक जीव है देश बढ़ाई इसका बल नाही किस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई सुन थियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू सोग हरख रंग हसे कभू निंचिन व्यवहार कभू ऊबकाश प्याल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कभू नृत करे बहुपांत कभू सोए रहे दिन रात कभू महाक्रोध विकराल कभू सर्व की हो त्रवाल कभू होए बह बड़ राजा कभू पेखारी नीच का साजा कभू अप कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिन ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कभू होए पंडित करे बखान कभू मोम तारी लावे ध्यान कभू तक तीर्थ स्नान कभू शिष साधक मुख ज्ञान कभू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवें नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कभू सात संगते पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सत कुर्बान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार कले बड़े बड़े अंकारिया नान गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज विमान सो नरक पाती हो स्वांग जो जाने मैं जो गुणवंत सो विष्टा का जन आपस को कर्म वंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे तान पूम का जो करे गुमान सो मूर्खा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुकुत आगे सुख पावे तनवंता हुई कर गर्भावे तृण समान कच संग न जावे बहु लश्कर मान ऊपर करे आस पल पीतर कांका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटाय विमान सो जन नानक दरगह परवान
कोट कर्म करे हों धारे शर्म पावे सगले विथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट न आवे सर्व की रे जा का मन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने में किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस खटे लख को उठावे तृप्त नावे माया पाछे पावे अनेक भोग भिख्या के करे मैं तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं पूरा जाए सुपन मनोरथ बिथे सब खा जाए नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी से प्राप्त होए करुण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करुण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछु कीनो सो अपने रंग सबसे दूर कहूँ के संग बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए नानक सधीरे असमाए आप उपदेश है समझे आप ही रचिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान थनंतरे कैसोए अपने चल आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्याने सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुख नार्जा घटे संत के दुखन जम तेरी छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोबाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान त्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी करे संत के दुखन ते मुख पवे संत के दुखन काग जोन लवे संत के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिक जोन किरमाए संत के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को चले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओई विगत पाए संत का निंदक मात पाए संत का निंदक ठिंटिक न पाए संत का निंदक मां प्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज पे हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग है संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर तीर्थो था जो सास बिना मृतक की लो था संत के दुखी की जड़ किचनाए आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को और ना राखन हार नानक संत पावे ता ले उबार संत का दुखी यों बिल नाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक की दनी त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत कीर्त निंदक का तुही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी नाम रहना जीवाई है संत के दुखी की पूजे न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख ना तृष्टै कोई जैसा पावे तैसा कोई होए कया कीर्त ना मेटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात किसे क्या उसास विरास सब कछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ पागी, नानक जन से। श्लोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी मानव की टेक बिटी सब जान, देवन कोई कह भगवान, जिस कह दिए रहे अगाए, बहुत न कृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान के कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोई, पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, साथ संग विषय सब संग, चरम चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मथा, बड़ पागी के जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करें विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उठकी ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सुजय, तिसकी जानु तृष्णा बुझय, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अंदिम कीर्तन केवल बखान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चितावे, सो सं सुहेला नहीं बुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डर है, जैसा था तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे, आम जाम दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रज थाप उठाप, अब नासी नाही किस खंड, तारण तार रहो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरुख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता

ने अपनी मितलत जिसकी सिरठ सो करने हार अवर न बूझे करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावे सोवर किया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काटन हार जन कै संग करे संसार जन का सेवक सोवर भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है बे सच नानक घोषी वे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत कीर्तन हार नाम सत सत ध्यान हार आप सत्य सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत्य सत प्रभ वक्ता सुर सत्य सत जसवंता भूजन हार को सत सब होए नानक सत्य सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मंत्र ताया पै ते निरपो होए बसाना जिस पे उपजा तिस माहि समाना बस माहिले बस गडाई ताको पिन न कहना जाय बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानकेक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे प्रभ के सेवक को न पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते ऊँचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैद प्रगटाया नीकी कीरी में कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटताप ताको राख देकर हाथ मानस जतन करत वो पात तिसके करत बिठे जात मारे न राखे और न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरु पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोत नाम कहु नानक जन कै सत्काम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नी रात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने किसकी महिमा कौन बखानो किसका गुण सही न जानो आठ पह प्रभ बसे हजूरे कहु नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व शोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग हा मन जान न होगी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा श्लोक सतपुरख चिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड भागी है सतगुर सिख का हल्क पल सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है गुर कै गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप उसको कर कचना जनावे हर हर नाम हृदय सब ल्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बीसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ अनक पार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राका ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहज ज्ञान ले आना जाइए नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइए सफल दर्शन पे खत पुनीत परस चरण गत निर्मल रीत
एकत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर वचन करना गाने, मन संतोखा संपतियाने। पूरा गुरख हो जाते मंत्र, अमृत दृष्ट देखे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जेवा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। काहू भूल न पहुँचत प्राणी, अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत की नहीं न पाई। अनेक भगत बंधन नित करें, चरण कमल हृदय सिमरें। सद बलिहारी सदगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। यह हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जहाँ के मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया कै संग ना ले, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगाश से, नानक परम मोह दुख कै के नाशे। तपत माए ठाठ वर्ताए, अनंत भया दुख ना ठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेश से, साधु के पूर्ण उपदेश से। पहु चूका निर्भव हो बसे, सगल व्याध मन तीख है नसे। जिसका साथ इन कृपाधारी, सात संग जप नाम मुरारी। हित पाई चूके परम गमन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार गुण सगली मोही। अपने चरित्र प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर दिन दूजा नाही कोई, सर्व निरंतर एको सोय। ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगाश साथ कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक हे संसार अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उधारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गौ नाम हर वत्स। ए तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मरमाए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट टूट धावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाँछे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करें पली करनी, सा शोभा पझर की सरनी। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबोधो हर कह नाय, वै विस्तावतावै ठाए। ताँ को विघन न लागे कोई, जहाँ कह हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठाडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पहु बिन सह पूर्ण हो आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाय बसे अविनाशी, कहु नानक काटी जम फांसी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिटे प्रभ से, आप त्याग शरण गुरुदेव। क्यों रतन जन्म का हो उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए। संग न चाल तेरे तना, तू क्या लगता है मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अरबंता, इनसे कहो तुम कौन सुना था। राग रंग माया विस्तार, इनते कहो कौन छुटकार। अस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पसारी। जिन दिए तिस विजय न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अबरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सिवाय नानक गुण गाओ। गुण गाव तेरी उतर स्मैल, गिनस जाए हो मैं विखैल। होए अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास हर नाम समाल। चार स्यानप सगली मना, साध संग पावे सजधना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहु नानक जा कै मस्तक लेख। एक को जप एक को सालाए, एक सिमर एक को मनाए। एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एक को एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक से भय, एक अरात पराचित गए। मन तन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिर प्रभ आया, परे आतो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। अष्टवदी जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देवो हर नाम। सात जना की मांगो धूल, पार ब्रह्म में श्रद्धापूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ध्याव। चरण कमल सुन लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत।
एक पोट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट मांस कोए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूरन पुरख नहीं डोला में। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध के संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंधिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुरु ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुख जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी श्रद्धा सब पूरी, रव रया सत्संग जूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगर मैं राखे, गुरु प्रसाद तो बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे। गुरु पूरे तक ए बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम, आम त्याग जो को हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुपावो, आप जपो अब रह नाम जपावो। भगत पाए करिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार। सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़क जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआव। नेत्रोपेक दर्श सुख होए, मन बिकसै सात शरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा तही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर कृतपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सो ही पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनिया नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक ने हर के गुण गाए। अनित राज भोग वड्याई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। फली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत। सात संग प्रभ दियो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपके ही सृजाप अष्टपदी। जब आकार एक अचना दुष्टेता, पाप तुम तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस अंकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्क सो कौप से व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होत परम। आपन के आप प्रतीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कौ किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर कहु कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहि सुवाय, तब शिव सतत कहु कित ठाय। जब आपे आप अपनी जो तरह, तब कवन निदार कवन तत डरे। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपनासन, कहे जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जाम की द्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरुष।

तैं छल सिद्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संसमावे तैं किसे पूर कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नान करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माय बाप मित्र सत भाई जय सर्व कला अपने पर बीन तह वीर कते कहाँ कुचीन जब आपन आप उधार है तौ सगन अप सगन कहाँ विचार है जह आपन ऊंच आपन आप मेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विषम रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहां किसे व्यापक माया आप उसको आपे आदेश तेहु गुण का नहीं प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु व्यंत उचते ऊंचा नानक आप उसको आपे पहुँचा जह आप रचियो प्रपंचाकार तेहु गुण में कीनो विस्तार पाप कुंते कही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हो मै मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत है आप जह पसरे पसार संत प्रताप दो पाक का पै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे अनच चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगणत तोले जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक की को पसरिया दूजा कह दुष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जहाँ तिस पावे ता सृष्ट पाए अपने भाणे ले समाय तुम ते पिन नहीं किछोए आपन सूत सब जगत परोए जहाँ को प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जन सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रास्ते तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तिस सज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप तत्पाल है जियन बहु पाक जो जो रचियो सो तिसे त्याग जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करें हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कह नाए तिसकी आस न बिथी जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जहाँ कह मन बस्या निरंकार बंधन तोड़ भय निर्वैर अंधन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पहमेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वाव आठ पहर प्रपे खुनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परीख्या मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते फो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एक आटेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवे जाए तिससे दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निरपो जपै सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन देखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सुहोत निहाल था कह निकट नावत काल अमर पय अमरा पद पाया साथ संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माए अनेक रंग नाना दिष्टाए नौ निज अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाए अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक किशन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश दयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाए तिस्ते तिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कभू डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रिहो स्वामी ओतपोत गुर प्रसाद भ्रम का नाश नानक तिन में ए विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप

तिस लई मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व पूत आवरतारा, सर्व नैन आप ही खनहारा, सर्व समग्री जा का तना, आप जस आप ही सुना, आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इससे होए सो नाही बुरा, हो रहे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग्राच, ताकि गत मिल कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद दान के जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकुट जिस हृदय भगवंत, तान तान तान जने आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संग चितावे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित्यागो तरंग, संजना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करो, साथ संग अगन सागर करो, हर तन के पर लेओ भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद, साथ संग पज परमानंद।

गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

शरीर एकांत में नहीं टिकेगा तो मन एकांत में कब आएगा? सर मैं इसे पंजाबी सिर्फ वर्ज कर दें क्योंकि वो लिखा सारा हिंदी विच है। उसे फिर रामकृष्ण परमहंस ने सवाल कर दिया, कहता क्यों जरूरी है एकांत विच बैठना मन नू टिकाना? ते उसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस उत्तर देंदे ने कि दुध कोई चो के लियावे ते उस दुध दे विच पानी पा दईए ते कदी दुध पानी दे उत्ते तरदा है? कहन लगे बिलकुल नहीं, दुध विच पानी मिलाओ कदी भी दुध जेड़ा वो पानी दे उत्ते तरेगा नहीं। पर नाल उन्हें कह दिता अगर बर्तन साफ होवे दुध नू गर्म करके जाग लाई जाए ते कि जाग लाण तो बाद उसे वेले आप रिड़क देने हैं? कहन लगा नहीं, जो उसे वेले रिड़किया ते कुछ भी नहीं निकलना, ना मक्खन ना लस्सी ना यो दुध रहना है। कहन लगा फिर ओदे लई एकांत बहुत जरूरी है, ओदे लई कुछ घंटियां दा टिकना जरूरी है। ते जदो ओ टिक जाए सवेरे मदानी पाई जाती है, उस मदानी नाल रिड़किया विचों मक्खन निकलदा है। ते स्वामी रामकृष्ण कहन लगे अगर मक्खन नू पानी उत्ते रखिए कि वह पानी विच डुबदा है कि तरदा है? कहन लगे वह पानी उत्ते मक्खन दा पेड़ा तर जांदा है। कहन लगे बेटा देख, संसार दी खेड एक दुध दी तरह है, जे तू खिंडिया होया सोचे भी संसार पानी विचों मैं दुध दी तरह तर जा, कभी भी दुध पानी उत्ते नहीं तरदे, तरदा जदों भी तरदा है मक्खन तत तरदा है, पर मक्खन उदो बनदा है जदों जाग ला के उनू एकाग्रता मिल जाए ते उदू बाद उनू गिर गया जाए, तत ही तर सकदा है। गुरमुखो मेरे गुरु नानक साहब ने मदाना केड़ा लिया, उच्ची सुरत नू मदाना बनाया क्योंकि पर्वत उच्चा है, उच्ची सुरत नू मदाना बनाया ते कृपा कीती उहने, मन जेड़ा है कि सप दी तरह टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। कभी सप नू देखो, वह कभी वाण विच की देखिए ना, जिवें वाण दे वड्डे पए ने उसे तरह कभी टेढ़ा कभी उच्चा कभी नीवा। इस मन वल झाती मारीए प्यारिओ, ते एक खिन दे विच कदी किधर सप दी तरह टेढ़ा मेढ़ा बनिया फिरदा है। कहन लगे मन दा बना नेत्रा, उच्ची सुरत दी बना मदाणी, ते गुरु दे शब्द विच इहनू टिका दे ते सवासां नाल ज्यों ज्यों रिड़केगा प्यारिया इहदे विचों तत निकलेगा। बाबा नानक जी ने बचन कहे, कबीर साहब ने बचन कहे, कबीर जी का एक बचन असीं पढ़ने, देखो रिड़किया संसार विच ही जाणा, इहदे विच रह के उहनां दा शलोक हुंदा कबीर माया डोलनी। इत्थे डोलनी का अखरी अर्थ डोलन वाली नहीं, तुसीं एक शब्द पिंडां विच पढ़दे सो वरतदे सो, एक शब्द दे डोलू, एक शब्द सी डोलनी छोटा डोलू, डोलनी शब्द वरतने कहिंदे संसार दी माया तां एक डोलनी दी तरह है। डोलनी दे अर्थ करांगे भांडे दी तरह, भांडे दे अर्थ करांगे चाती दी तरह, भाव अर्थ इत्थे आएगा कि संसार दी माया एक भांडे दी तरह है। पवन चकोलन हार, पवन दा अखरी अर्थ स्वात, ते स्वासां दे नाल इहनू रिड़क प्यारे, स्वासां दे नाल किसे नू रिड़कन दी जाच आ गए। ते साहिब ने उत्थे बचन क्या कहन लगे, माया रिड़क दे थारे ने पर बद किस्मतीए, कई माया नू रिड़क के केवल लस्सी पी के दकार मारी जांदे ने, कई इहनू रिड़क के तत मक्खन नू खा के चले जांदे ने। रिड़क दे सारे पए ने, कोई ऐसा नहीं जिहड़ा माया दी चाती नू रिड़कदा नहीं पिया। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संतो माखन खाया, छाछ पीए संसार। हुण जिहड़े साडे सवास ने, इहनां दी गति इहनां दी लय हर वेले बदलदी है। मैं एक दो उदाहरण अर्ज आप जी दे सामने रखनिया चाहना। सवासां दा बहुत वड्डा योगदान है साडी इबादत विच, साडे सिमरन विच। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮੱਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੈ ਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ

0: हाथ उठा वकारा तो मुक्ति नहीं मिलनी तेनू लाला जोड़ देना मर्जी सुनो अगली पंक्ति
1: जिथे मुकुत ना हो जिचर शब्द न करे
0: विचारदा नहीं सोचता नहीं समझदा विचारण का मतलब की है समझ समझ अगला कहना विचारदा क्यों नहीं तू गल आप न्याणे नु भी कहने आम अपनी गल है भी माड़ा मोटा विचार लै समझ लै सोच लै कहने वेखना है अज जगत वेख रहा है विचारदा कोई नहीं समझदा कोई ता करके सतगुरु देखण का नहीं सतगुरु विचारण का विषय है समझण का विषय है इतने धोखा कर गया पुजारी इन्हें ढांचा ऐसा स्थापित किया है तुसी अज जिन्ना मर्जी जोड़ ला लो गल पै जाएंगे कहेंगे गुरु वेखण का विषय है समझण का नहीं जोड़ ला लो ऐसा स्थापित किया ढांचा सच्चा ज्ञान समझना विषय गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक बारी फिर सुन लो दिमाग च पक्की गा लो सारे नाल बोल के वेखो सौखा सीधे शब्दां च गा लो।

आकाश है मैं पंछी दी नहीं आई है उड़ारी मारा ते उड़ान मेरी बड़ी हो सकती है पर तेरे आकाश नालों बड़ी नहीं हो सकती पंछी आकाश किवें माप सकदा है हे परमात्मा तू सागर है मैं मछी हाँ तेरा थाहो तेरा अंत किवें पा सकना ना ते तेरी गहराई ना तेरा म्यार ना तेरे किनारे इन्हां नूं जान नहीं सकता। गरीब नवाज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह।

परमात्मा शेष नाग हजारा फना वाला ते एक एक मुंह दे विचों एक जुबान दे नाल हजारा वार नवे नाम उच्चारण करदा फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। हे निरंकार तू अगम है, तू अगम है, अपने नाम दा रस बख्श। जीव दे अंदर जदों नाम दा रस आ गया बेअंतता नहीं तेरे प्यार दे अंदर समा जाएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर पिता जिन्हां दा 300 साल ज्योति जोत दिवस मनाया नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का गुरियाई दिवस मनाया। समूह सिख जगत समूह सिख भाईचारे गुरु नानक नाम लेवा नू सतगुर सचे पातशाह जी का पावन संदेशा एहो ही है कि महिमा परमात्मा दी कीती नहीं जा सकती। आओ रब दे दीदार रब दी बाणी विचों कहिए ते कलगीधर पिता ते साहब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे दीदार करदे आं। रब जी नूं पा जाइए परमात्मा दी हजूरी विच।